मोहतर सामीन, लगे हाथों ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि किस पानी से गुसल करना या वुज़ू करना जायज़ होता है? बारिश के पानी से, नदी नाले के पानी से, चश्मों के पानी से, समुंदर के पानी से, दरिया नहर कुएं बर्फ़ और ओले के पानी से वुज़ू जायज़ है और इसी से गुसल भी जायज़ है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हमें कुछ ऐसे पानी है जिस पानी के अंदर अगर कुछ नापाक चीज़ चली जाए तो वो पानी को नापाक कर देती है और उससे वुज़ू या गुसल नहीं करते। उनमें से एक माय मुस्तामिल यानी वो पानी जिससे एक मर्तबा गुसल कर लें या वुज़ू कर लें और वो किसी बर्तन वगैरह में जमा हो जाए तो अब दोबारा उस पानी से गुसल या वुज़ू नहीं कर सकते।

यहाँ पर यह भी अर्ज़ करता चलूँ कि वो कौन सा जूठा पानी है जो पाक होता है। आम आदमी का जूठा यानी किसी इंसान ने किसी बर्तन में पानी पिया और वो जो बाकी पानी रह गया है वो पाक है, उससे गुसल या वुज़ू कर सकते हैं। वो जानवर जिनका गोश्त हलाल होता है खाया जाता है, उन्होंने अगर किसी बर्तन में पानी पिया तो जो बाकी पानी रहेगा वो पाक कहलाएगा, उससे भी गुसल या वुज़ू कर सकते हैं। घोड़े गधे और खच्चर का जो जूठा है ये मशकूक है, यानी इसमें के पाक या नापाक होने में शक है। अगर किसी जगह पर किसी बर्तन में सिर्फ वही पानी है जिससे घोड़े गधे या खच्चर ने पिया हो तो ये पानी मशकूक कहलाएगा, तो इसका हुक्म ये है कि इस पानी के साथ वुज़ू या गुसल कर लें मगर बाद में पाक मिट्टी से तयम्मम भी कर लें, ताकि अगर वो पानी पाक हुआ तो पानी के साथ तहारत हासिल हो जाएगी, वगरना जो तयम्मम किया है उससे तहारत हासिल हो जाएगी।